0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai? Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai? कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
6: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @cityfm89
7: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रॉलिंग रील फिक्स.
8: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल. क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
2: City FM 89
1: on the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's EDM.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Netflix is expanding its Royal Cinematic Universe, greenlighting a massive prequel to its historical drama, The Crown, that will cover five pivotal decades of British history. Original showrunner Peter Morgan and production powerhouse Left Bank Pictures are returning to steer the ambitious project, backed by a staggering rumored budget of $500 million.
8: City FM 89, we're playing the song.
9: Mubarak ho! Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Uphone se Telenor and Telenor se Uphone karo latadat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
10: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat 2500.
11: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
12: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
13: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें
14: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ
13: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक
14: जो तुम चाहो
13: डाउनलोड दी ऐप नाउ
15: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
16: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ 550 रुपए में 60 GB डेटा 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ क्योंकि टेलीनॉर है ना यार वूहू जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें
17: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया
15: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल No Frost, No Worries.
9: मुबारक हो Uphone एंड Telenor की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 crore. तो Uphone से Telenor एंड Telenor से Uphone करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
0: City FM 89.
8: We are playing your song.
18: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.
19: Welcome back, everyone. Your last song was All My Friends by Jack Harlow. All right, so I'm putting on my nerd cap early because it's time for Explained. And today we're talking the psychology of the infinite scroll. So ever wonder why you hop onto an app and check one message, but find yourself blinking at the screen for 40 minutes afterwards and wondering where the time went? That was me last night as well. Well, it isn't lack of willpower. It's basically a masterclass in behavioral engineering designed to keep your brain hooked. So here's the breakdown. So every time you swipe down to refresh your feed, you're essentially pulling the handle on a digital slot machine. Psychologists call this the variable ratio in reinforcement. If you knew exactly what was coming next, you'd get bored. But because you might see a hilarious meme, a breaking news story, or like on your photo, your brain releases a hit of dopamine every time you pull down. It's the uncertainty that makes it addictive. Back in the day, the internet had pages, right? You had to click next to keep reading. Well, today we have infinite scroll. This removes what designers call stopping cues. Much like famous psychological studies in which people ate 73% more soup from a bowl that secretly refilled itself, which is a crazy experiment, your brain never receives a signal that the content is finished. So you just keep consuming because there's no natural like endpoint. And yeah, there is a reason notification bubbles are almost always a bright, aggressive red. In nature, red is a high arousal color associated with alarms or even fruit. When you see that little red dot, your brain's salience network kicks in, creating a tiny hit of cortisol, which is your stress hormone, that only goes away once you click it. The Zeigarnik effect loop that we've talked about before, yeah, it's that. An unfinished task that your brain feels a physical need to close. Yeah. That was me last night, guilty as charged. I'm genuinely thinking about just throwing away my phone at this point. In any case, let's listen to our next few songs, starting with Up and Out and Gone by Neo.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: We're playing your song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
7: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Jaise bas 5 minutes mein apna account open kare.
8: Fund transfer ho ya koi bhi bill payment. Always on customer support ke saath.
7: Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
8: Jo tum chaho.
7: Download the app now.
9: Ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500.
10: Agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 July tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur 5 fair earnings ke saath 2500 se zyada inaamat.
9: Ek duni do do duni char.
11: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
12: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया
13: मुबारक हो यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़ तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर
6: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
14: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Hire kar naya no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein, aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: Telenor ki weekly extreme plus offer lagao. 550 rupaye mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ क्योंकि टेलीनॉर है ना यार वूहू जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें
6: चिकन पॉक्स याद है ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है कभी सोचा भी नहीं था तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें
7: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें
8: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2,500
9: अगर आप हैं इनड्राइव कार पाए या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात
10: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
11: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
12: मुबारक हो यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़ तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर
2: सिटी एफएम 89
1: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन
13: Welcome back, everyone. Your last song was Sisters and Brothers by Kanye West. And I have a text here. Hi there, you have a good playlist, also nicely conducted by you. Thank you. Can you please play a song by Majid Jordan of your choice? Thanks, Faisal from Karachi. I would love to play a song for you. However, can you please do me a favor and just tell me a song that you like by them? Because they have so many. And I wouldn't really know what to pick. And especially for me at 8:48 in the morning, having to go through a database of thousands of songs is a little hard. So please do let me know if you have one in mind. Alright, let's continue with our news from the fashion world. Kim Kardashian's Nike Skims has debuted the Studio Stretch, an ultra-soft fabric engineered specifically for the physical demands of studio environments like yoga and Pilates. Moving away from heavy, restrictive compression, the material utilizes Lycra Adaptive to enhance

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
5: Trending today.
6: Netflix is expanding its royal cinematic universe, greenlighting a massive prequel to its historical drama, The Crown, that will cover five pivotal decades of British history. Original showrunner Peter Morgan and production powerhouse Left Bank Pictures are returning to steer the ambitious project, backed by a staggering rumored budget of $500 million USD.
4: You're listening to City FM 89.
7: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupay mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura hafta befikri se. Unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali Nami Scheme aur Mali Fraud ke pehram milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
8: Peach Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
9: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
10: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
11: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
12: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
11: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
12: जो तुम चाहो.
11: डाउनलोड द ऐप नाउ.
13: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम.
14: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
15: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
8: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, no worries.
16: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
17: City FM 89. We're playing your song.
18: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
19: Welcome back, everyone. Your last song was Sugar Jocking by Sabrina Carpenter. All right, so it's time for a pop culture roundup. Apple TV Plus has officially released the trailer for its upcoming psychological horror thriller series, Cape Fear. The 10-episode limited series is an adaptation from creator, showrunner, and executive producer Nick Antosca, and is executive produced by Academy Award winners Martin Scorsese and Steven Spielberg. The show stars Academy Award winner Javier Bardem as the notorious killer Max Cady, alongside Academy Award nominee Amy Adams and Patrick Wilson, as happily married attorneys Anna and Tom Bowden. And I, for one, am very excited to watch this. Alright, I have more pop culture roundup for you guys after our next few songs, starting with Society by The Weeknd.

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: We're playing your song.
2: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se, jaise bilkul naya.
4: Dulux. Mubarak ho! Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Uphone se Telenor and Telenor se Uphone karo latadat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
5: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inaamat 2500.
6: Agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur 5 year earnings ke saath 2500 se zyada inaamat.
5: Duni do do duni chaar.
7: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
8: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल. क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
4: मुबारक हो! Uphone एंड Telenor की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो Uphone से Telenor एंड Telenor से Uphone करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
0: City FM 89, we're playing your song.
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m. City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupaye mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur socializing karte jao kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali Nami scheme aur Mali fraud ke pegham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
6: Pete hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: Chicken pox yaad hai, ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
8: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
9: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2,500.
10: अगर आप हैं इनड्राइव कार पाए या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात.
11: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
12: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
13: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
12: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
13: जो तुम चाहो.
12: Download the app now.
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
14: Mubarak ho. Ufone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Ufone se Telenor and Telenor se Ufone karo latadat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
4: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: Is awaaz ne chheen liya hai sukoon. To le aaye Mosspel, kyunki day ho ya night, Mosspel karega ghanto fight. Mosspel, machhar aap se dur, rehne par majboor.
6: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inaamat 2500.
7: Agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur pay fair earnings ke saath 2500 se zyada inaamat.
6: Ek duni do do duni chaar.
8: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
9: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
4: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: सिटी एफएम 89.
10: आई ग्रो अप, आई वांट टू बी स्ट्रांग.
11: फॉर मेनी चिल्ड्रन इन पाकिस्तान दैट चांस इज ऑलरेडी स्लिपिंग अवे. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
10: I want to learn big things.
11: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
10: I want to be the fastest.
11: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
10: I want to grow up like everyone else.
11: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
12: Nurture today, strengthen tomorrow.
11: Act, a Dawn Media Initiative.
3: You're listening to City FM 89.
13: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
14: Yeah, man, it's just one of those days. I mean, everything's going wrong, but it's up to me to turn that around. Just like it is up to anyone. So if we just think about the good, ignore the bad, we could turn this around. Plus, no matter what, I got summer on the inside.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
5: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
6: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
5: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
6: जो तुम चाहो.
5: डाउनलोड दी ऐप नाउ.
4: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
8: Non-Stop Hits.
9: No matter what, no matter what, you got

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
0: City FM 89, we're playing your song.
4: Everybody go.
1: You're listening to
5: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 3 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing your song.
5: Trending today.
6: Netflix is expanding its Royal Cinematic Universe, greenlighting a massive prequel to its historical drama, The Crown, that will cover five pivotal decades of British history. Original showrunner Peter Morgan and production powerhouse Left Bank Pictures are returning to steer the ambitious project, backed by a staggering rumored budget of $500 million.
7: City FM 89. इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
8: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लाता-दात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
9: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.
11: No talk.
12: Just you
11: and the music.
12: Back to back
11: starts now.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
3: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
4: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
3: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
4: जो तुम चाहो,
3: डाउनलोड द ऐप नाउ.
5: वी आर
1: सिटी एफएम 89.
0: यू आर लिसनिंग टू
6: नॉन स्टॉप हिट्स.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ. पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
2: Have you saved our WhatsApp number yet?
3: 0314289889.
2: Get in touch over WhatsApp.
1: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
0: सिटी एफएम 89.
4: यू आर लिसनिंग टू
2: नॉन स्टॉप हिट्स.

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
3: 89.
4: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: This show is brought to you by Jazz.
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
2: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
1: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
3: Log on to facebook.com/cityfm89 and share your feedback.
4: You're listening to
5: Rush Hour with Wes.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM. City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Mubarak ho. Ufone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Ufone se Telenor and Telenor se Ufone karo latadat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
7: Chickenpox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
8: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
9: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
10: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
9: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
10: जो तुम चाहो.
9: डाउनलोड दी ऐप नाउ.
11: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
6: मुबारक हो. यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
2: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
0: You're listening to
12: Rush Hour with Wes.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy.
3: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89. Trending today.
7: Netflix is expanding its Royal Cinematic Universe, greenlighting a massive prequel to its historical drama, The Crown, that will cover five pivotal decades of British history. Original showrunner Peter Morgan and production powerhouse Left Bank Pictures are returning to steer the ambitious project, backed by a staggering rumored budget of $500 million.
6: City FM 89.
8: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
9: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se, jaise bilkul naya.
10: Telenor ki weekly extreme plus offer lagao 550 rupaye mein 60 GB data 15000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur socializing karte jao kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali nami scheme aur mali fraud ke pehram milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare. Peach.
11: Ek duni do do duni cha sahi intikhab ke inamat 2500.
12: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
13: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
14: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
15: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
14: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक,
15: जो तुम चाहो।
14: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
16: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
17: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
18: सिटी एफएम 89.
1: You're listening to
19: Rush Hour with Wes.
20: So tell us, you're the biggest star in the world tonight. How does it feel?
21: Honestly, I don't really feel anything at all.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Hired No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
5: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
6: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
7: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
8: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
9: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज GSK पाकिस्तान की जानिब से है। मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
11: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
1: You're listening to
12: Rush Hour with Wes.
1: You're listening to
12: Rush Hour with Wes.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM
1: 89.
6: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupay mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura hafta befikri se. Unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali nami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
7: Pete Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
8: Ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2,500.
9: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
10: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
11: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali nami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
7: Hire kar naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
11: Mubarak ho. Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर
1: यूर लिसनिंग टू
12: रश आवर विद वेस
1: टू
12: रश आवर विद वेस

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
5: Mubarak ho. Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Uphone se Telenor and Telenor se Uphone karo laatadaat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
6: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inaamat dhai hazaar.
7: Agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur 5 fair earnings ke saath 2500 se zyada inaamat.
6: Ek duni do do duni chaar.
8: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
9: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
10: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
11: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
10: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
11: जो तुम चाहो.
10: डाउनलोड दी ऐप नाउ.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: मुबारक हो. Uphone एंड Telenor की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो Uphone से Telenor एंड Telenor से Uphone करो लाता-दात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
0: City FM 89 sounds different.
1: You're listening to
0: Rush Hour with Wes. With Wes.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
5: Telenor ki weekly extreme plus offer lagao. 550 rupaye mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur social karte jao, kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali Nami scheme aur Mali fraud ke pegham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare. Peet.
6: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat 2,500.
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
8: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
9: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें
10: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ
9: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक
10: जो तुम चाहो
9: Download the app now.
4: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
11: Mubarak ho. Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर
12: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
13: यू आर लिसनिंग टू
14: रश आवर विथ वेस

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: Higher No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे mobile app से complete control. No frost, no worries.
5: मुबारक हो. Youfone and Telenor की calling families मिलकर हो गई हैं more than 7 crore. तो Youfone से Telenor and Telenor से Youfone करो लातादात calls किसी भी package पे और रहो connected more than ever before.
6: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात ढाई हजार.
7: अगर आप हैं इनड्राइव कार पाए या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम.
8: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ cityfm89
9: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रोलिंग व्हील फिक्स.
10: Follow us @ cityfm89 on Facebook, Instagram,
11: Twitter,
10: Vimeo,
11: on SoundCloud.
1: You're listening to
3: Rush Hour with Wes.

0: City FM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing your song.
1: This show was brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: You got me going crazy.
4: Coming up next.
5: Future Sounds.
6: City FM 89. Trending today.
7: Netflix is expanding its Royal Cinematic Universe, greenlighting a massive prequel to its historical drama, The Crown, that will cover five pivotal decades of British history. Original showrunner Peter Morgan and production powerhouse Left Bank Pictures are returning to steer the ambitious project, backed by a staggering rumored budget of $500 million.
2: City FM 89, we're playing the song.
8: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
9: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
10: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
9: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
10: जो तुम चाहो,
9: डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: वी आर
1: सिटी FM 89.
5: Future.

0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
4: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
5: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
4: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
5: जो तुम चाहो,
4: डाउनलोड द ऐप नाउ.
1: City FM 89.
0: You're listening to
2: Future Sounds.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
3: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.